0: और आई एम डाउन टू अर्थ, शी लाइक्स मी बिकॉज आई एम ह्यूमरस, बट फिर कहते पब्लिक में यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ. मैंने कहा मैं क्या करूं फिर, मैंने पब्लिक में जाके मैं सीरियस नहीं हो सकता सडनली.
1: रिचर्ड जी, सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो वही है अगर आपको लगता है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है. वो कर रहा है, वो कर रही है, वो नहीं कर रही, आपको लग रहा है वो कंट्रोल कर रहा है, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है. आप पहले भी चढ़ जाओ, आपको कोई आगे जाने की जरूरत नहीं है.
0: वो मुझको दो साल से ट्राई कर रही है दैट वी लिव इन टुगेदर, आई सेड ना.
1: हाँ बिल्कुल, थोड़ी दूरी बना के रखो थोड़ी सी. थोड़ी आपकी भी गलती हो सकती है, आपने भी बीच में लटकाया होगा ना उसको. उसको बताओ कि नहीं होगा मेरे लिए, ये तेरी तीन चीजें रेड फ्लैग है, तो इनको ठीक कर ले, फिर देख लेंगे.
0: I have told her openly and we have so many common friends and I go out with so many other friends also.
1: और वैसे भी 18-16 तो है नहीं कि जो मतलब लव है ना.
2: हो सकता वो इस चीज करके खिंचदी होवे, एक पासे मेरे नाल तेरी अर्जी लगी है, दूसरे पासे तू दूसरेयां दे नाल भी घूमण फिरन चले जाना, ये चीज तू दस नहीं ना रहे.
1: आप फिर ऐसे और भी किसी के साथ घूमने जाते हो?
0: मैं अभी क्या कहते हैं फेस्टिवल में गया था बाकी फ्रेंड्स के साथ.
1: बाकी फ्रेंड्स के साथ? फ्रेंड नहीं हो के साथ?
0: नहीं नहीं, देयर वर 8 ऑफ अस, देयर इज नॉट वन सिंगल गर्ल.
1: नहीं, डजंट मैटर, लड़की थी बीच में कोई?
0: हाँ,
1: तो फिर आप शुक्र करो आप बात कर रहे हो. मैं होती तो मैं
0: फसल क्या. उसको मैंने पूछा था वुड यू लाइक टू कम, शी सेड मुझे बॉलीवुड का एबीसीडी नहीं पता, व्हाट विल आई गो देयर एंड डू. मैंने कहा ठीक है देन आई विल गो विद माय अदर फ्रेंड.
2: नहीं गुड गुड, तू ही तो खाने टिक करके आए.
0: अच्छा चलो, एआई से मुझे एक याद आया, देयर इज अ रील व्हिच गोस वायरल की एक बंदे का चप्पल खो गया इन अ मंदिर.
2: मेरी इन्ह च गवाची लब के दस
1: रिचर्ड जी, ये सही हो जाएगा.
0: वो कहेगा भाई जी मुझे छोड़ो, काम
1: नहीं. रिचर्ड जी आप ना एआई से पूछो कि मुझे इस क्वालिटी वाली लेडीज में वो है, तो आप वो डालो और बाकी लेडीज का वो इंटरेस्ट डालो, तो फिर वो चूज कर देगा आपको.
0: आई एम अ वेरी फ्लेक्सिबल गाय, मैं किसी के साथ भी गोरी काली, शी जस्ट नीड्स टू बी फिट.
1: बस शक ना करती हो ना.
2: मतलब कहना मतलब मैं किसी नाल भी एडजस्ट कर लेना,
1: फिर उसके साथ ही कर लो जो करने को बोल रही है एडजस्ट. अगर आपने कर ही लेना है किसी के साथ भी, तो किसी के साथ तो वो किसी एक है ना.
0: मैं इंसानियत के साथ धोखा नहीं दे सकता.
1: नहीं आपने बोला
0: आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ.
1: है ये तो गलत है. नहीं रिचर्ड जी, ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए. हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी रिचर्ड जी. ये क्या कह दिया आपने? ऑन एयर मूवी.
0: एज इन द मैनकाइंड,
2: मैनकाइंड इंसानियत नु प्यार करने वाले बंदे.
1: ते ही रिचर्ड जी जिन्होंने अगली बारी मैंने मिलना, ते इन्होंने मैंने पूछना क्यों है तेनू. ये हर बार मुझे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सुक्ति आपको क्या हुआ. मैंने कहा कि मैं ऑन एयर नहीं हूँ आज.
2: थैंक यू रिचर्ड जी.
0: ओके जी, सत श्री अकाल.
1: थैंक यू रिचर्ड जी. नहीं ये
2: तो आती है प्रॉब्लम, ये तो मैनू भी एक दिन रीसेंटली मैनू आई. मतलब कई बार ना इदा लगता भी जिमें मान लो आप इतने गल करते हैं तो आम लाइफ भी उदा ही आप मिलेंगे तो उदा ही गल उदा ही होंगी रहूगी है ना. तो आप मतलब मुकदी गल भी इतने अपना कोटा पूरा करके उठते हैं गल्ला करन दा, उस तो बाद बंदे ने चुप भी होना होंदा कड़ी. तू चुप बड़े हो. मैं भी मतलब तू पुछो कुछ मैं दस दूंगा.
1: मैं भी यही कहनी हूं, मैं कहा बात करो मैं करती हूं.
2: मतलब उन्होंने शायद इदा उन्होंने इमेजिनेशन ही भी जाके तो बह जाना तो उन्होंने सानू गल्लां सुनाई जानी.
1: हंसे पाई जाने
2: साडे भी मैं कहां थकदे ऐसे थोड़ी होता करता. चलो खैर गलबात साड़ी अज चल रही है भी जोड़िया के आपसी खिज खिजाई उत्ते कि पार्टनर की ऐसी चीज़ है जिदे उत्ते खिज आउंदी है जिहड़ा तुहानू लगता भी इदा नहीं हो सकती. तो आप एक ब्रेक लाइए तो फिर आके आप गल करते हैं. तुम अपनी खिज खिजाहट तुम कढ के रखो भी कि चीज़ तुहानू खिज चढ़ाउंदी है.
3: ਔਨ ਰੋਡਸ ਆਨਰਸ ਕੈਂਪੇਨ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ BYD ਕਰ ਲੈ ਆਓ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰਾਈਵ ਅਵੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ BYD C-Line 7 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ

$54,990. BYD Z-Lion 8 Dynamic FWD सिर्फ $56,990. ते BYD Shark 6 Premium सिर्फ $57,900. एक खास ऑफर 1 अगस्त तो 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करन वाले लिए है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD Caroline Springs नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑन अस। कंडीशन अप्लाई।

0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पाडे करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।
1: Are you ready?
2: ऑस्ट्रेलिया विच हर बिल दी शुरुआत होने वाली है होर भी आसान। बिल्डिंग टिम्बर, पावर एंड हैंड टूल्स, स्लीपर, हार्डवेयर, डेकिंग, सेफ्टी एंड वर्कवेयर, विंडोज एंड डोर्स ते होर भी बहुत कुछ, सब एक ही ठाउं ते। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी ते ट्रेड क्रेडिट ऑप्शंस भी अवेलेबल ने। ए क्लास बिल्डिंग मटेरियल्स, तुहाडी हर बिल दा ट्रस्टेड पार्टनर। कमिंग सून, पता चलेगा इत्थे ही। सुनदे रहो रेडियो हांजी। ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
0: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनिआं दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252। सोना चाहिदा
2: भरोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042।
3: Attention travelers. The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
4: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
5: जुगाड़ नहीं ये है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं ये स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ओ पाजी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
6: हुन टेंशन छड़ो जी गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट।
4: फिर लवाइए किथों
6: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
7: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
8: हाय नी इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
7: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है।
8: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी तू बोल नहीं सकदी ओने नहीं होना तेरे पीछे।
7: लव इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय

0: ब्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए नी लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
1: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
3: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच अपने भविख की शुरुआत करो, हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स ते सीमित समय ले मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स ते हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा ले रहे बिल्डर्स वालों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है, अजे ही मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है।
0: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
0: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लैंडिंग।
1: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
4: ते। तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असीं बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलीगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
1: Are you ready?
2: ऑस्ट्रेलिया विच हर बिल्ड दी शुरुआत होने वाली है होर भी आसान। बिल्डिंग टिम्बर, पावर एंड हैंड टूल्स, स्लीपर, हार्डवेयर, डेकिंग, सेफ्टी एंड वर्कवेयर, विंडोज एंड डोर्स ते होर भी बहुत कुछ, सब एक ही ठाउं ते। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी ते ट्रेड क्रेडिट ऑप्शंस भी अवेलेबल ने। ए क्लास बिल्डिंग मटेरियल्स, तुहाडी हर बिल्ड दा ट्रस्टेड पार्टनर। कमिंग सून, पता चलेगा इत्थे ही। सुनदे रहो रेडियो हांजी।
0: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योग ना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
3: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी, ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए किथों?
3: सन करंट वालिया कोलो, 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
0: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है कि प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
5: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

रेडियो हाँ जी 1674 AM आज 18 अगस्त 2026 ते मंगलवार का दिन भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दियां खबरां दे विच क्लीन चिट दिती जा रही है किथे किथे क्लीन चिट दिती जा रही है ते आस्ट्रेलिया दे विक्टोरिया सूबे दे विच वोटां नूं ध्यान दे विच रखदियां होईआं चुनावी लॉलीपॉप शुरू हो चुके ने। आओ खबरां दी सांझ पाने हैं। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ ते

गाना रिकी खान ने गाया हुआ। वैसे नवी फिल्म आ रही है यार जिगरी कसूती डिगरी, ओ गाना है। पर इस किस्म के गाने मैनू लगता है हुण रिकी खान नू ही सारे अप्रोच कर लग गए। नाले बंदा लिख भी लैंदा है वधिया इहो जिहे, नाले गा भी लैंदा है। मेरा वैसे रिकी खान का मेरा फेवरेट जिहड़ा गाना है, फिल्म नहीं सी एड्डी वधिया हैगी, ओ मंजे बिस्तरे दूजी जिहड़ी आई सीगी गिप्पी गरेवाल ते सिमी चाहल वाली, पर ओदे सारे गाने तो उदा ही सीगे। पर आ एक गाना जिहड़ा रिकी खान वाला सीगा, मैनू इह लगदा कि ओ रिकी खान दी बेहतरीन कलम सीगी, ओदे तो उपर नहीं होणे हुण तक लिखे ने बड़े लिखे ने।

चेंज है यार, लिरिक्स चेंज है। मैंने लगा सीगा कि वही पिछला लिरिक्स होएगा, कंपोजिशन सेम है, म्यूजिक तो ये दिता ही नहीं। खैर एक बेस रखा हुआ है,

0: रिलीज होगी 21 अगस्त को।
1: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई।

रेडियो हांजी 1674 AM अज 18 अगस्त 2026 ते मंगलवार दा दिन भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दियां खबरां दे विच क्लीन चिट दिती जा रही है। किथे किथे क्लीन चिट दिती जा रही है ते आस्ट्रेलिया दे विक्टोरिया सूबे दे विच वोटां

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनेयां दा एक मजबूत घर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते
1: व्याह खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास तुन्ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग तुन्ना ज्वेलर्स परोसे दी निशानी रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
2: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ दी
1: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां ने
2: एहो गल्या ते मैं हुणे अपनी जुबान वड के हो जाना
1: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
3: जिंदगी किवें कटांगी मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू ओ चाहिदा
1: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन लव इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल
0: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सीधे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक भरोसे योग ना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए

0: ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ?
1: ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਜੂ ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ?
0: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ, ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਤੇ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0383857748 ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ, 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ, ਰੇਵਨ ਹਾਲ।
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्टगेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लैंडिंग।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
5: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
6: की होया,
5: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
6: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
5: या 90-77-97-33
6: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
5: याद रखो 9077-9733।
6: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
5: हर कदम तुहाडे नाल।

0: किसी एक है ना।
1: इंसानियत के साथ धोखा नहीं दे सकता।
0: नहीं आपने बोला
1: आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ।
0: ये तो गलत है। नहीं रिचर्ड जी, ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी रिचर्ड जी। ये क्या कह दिया आपने? ऑन एयर मूवी।
2: मैनकाइंड इंसानियत नु प्यार करने वाले बंदे।
0: ते यही रिचर्ड जी है जिन्होंने अगली बारी मैंने मिलना, तो इन्होंने मैंने पूछना क्यों है तेनू। ये हर बार मुझे वो क्वेश्चन पूछते कि सुखती आपको क्या हुआ, मैंने कहा कि मैं ऑन एयर नहीं हूँ आज।
2: थैंक यू रिचर्ड जी।
1: ओके जी, सत श्री अकाल।
0: थैंक यू रिचर्ड जी।
2: नहीं ये तो आती है प्रॉब्लम, ये तो मैनु एक दिन रीसेंटली मैनु आई, मतलब कई बार ना इदा लगता भी जिवें मान लो आप इतने गल करते हैं तो आम लाइफ च भी उदा ही आप मिलोंगे तो उदा ही गल उदा ही होंगी रहूगी है ना। तो आप मतलब मुकदी गल भी इतने अपना कोटा पूरा करके उठते हैं गल्ला करन दा, उस तो बाद बंदे ने चुप भी होना होंदा कड़ी। चुप बड़े हो। मैं भी मतलब पुछो कुछ मैं दादू।
0: मैं भी यही कहनी मैं क्या बात करो मैं करती हूँ।
2: उन्होंने शायद इदा उन्होंने इमेजिनेशन ही जाके तो बह जाना, तो उन्होंने सानू गल सुनाई जानी। साढ़े भी मैं कां थक दे ऐसे थोड़ी होता करता। जो खैर गलबात साड़ी अज चल रही है भी जोड़िया के आपसी खिज खजीत उत्ते कि पार्टनर की ऐसी चीज़ है जिदे उत्ते तुहानू खिज आउंदी है, जिहड़ा तुहानू लगता भी इदा नहीं हो सकती। तो आप एक ब्रेक लाइए तो फिर आके आपां तुहाडे नाल गल करदे, तुसीं अपनी खिज खजाहट तुसीं कढ के रखो भी कि चीज़ तुहानू खिज चढ़ाउंदी है।
3: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
4: हाँ जी रेडियो।
5: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। थोड़ा कोई हल करिए।
6: सोना चाहिदा?
7: भरोसा चाहिदा?
6: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा? चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा? गोल्ड लोन इजी एंड सेफ। रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042। ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
8: कित्थे वज गई तेरी गड्डी?
9: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेस विच समझाऊंगा किवें?
10: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
11: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय लई। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त to 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लई है, डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी लई आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑन अस, कंडीशंस अप्लाई।
12: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नू आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
2: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू है ते आखरी भी तू।
1: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो। गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
2: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
3: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
4: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ तुहाडा कोई हल करिए।
5: तुहाडा प्रभाव छोटे मौकियां विच देखा जा सकदा है, अते जीवन बदलण वाले मौकियां विच भी ए रोमांचक अते विहारक, संपूर्ण अते उत्साह पूर्ण हो सकदा है। ए उन्ना ही निखड़वा हो सकदा है जिन्ने की तुसी हो। तां तुहाडे अपने तरीके नाल हर रोज तुहाडी चिज़म दी योग्यता किसी दी जिंदगी नूं बेहतरी लई बदल सकदी है। अते तुहाडी वी सर्टिफिकेट तो लैके डिग्री तक इत्थे तुहाडे लई कोई ना कोई सही चिज़म योग्यता है। हुणे अर्जी देण लई चिज़म दी खोज करो। चिज़म बेहतरी लई RTO 0260।
6: हांजी हांजी, ओए हांजी
7: हांजी, रेडियो
8: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच अपने भविख की शुरुआत करो। हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स ते सीमित समय लई मिलण वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स ते हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करण ते हिस्सा लै रहे बिल्डर्स वल्लों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकदा है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नूं खत्म है। अजिहे मौके ज्यादा देर नहीं रहिंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नूं खत्म है।
9: Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
10: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपने दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 04332802522 ते।

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते
1: 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2 8 0 2 5 2 ते 04 डबल 3 2

सारे जो हाथों को लेके इन हाथों में तूने कहा था। आदत नहीं मुझको रोने की पर आंखों से आंसू फिसल जाते हैं, ना करना चाहूं पर बातों में अक्सर तेरे ही किस्से निकल आते हैं। दिल कहे मेरा उसे प्यार करना छोड़ दे, सेम टू सेम जैसे वो गई छोड़ के। चल ले कर मेरा जो भी तेरे कोल लाके सब कुछ मैनू मेरा मोड़ दे, मोड़ दे। चल चल चल चल चल चल चल ले कर मेरा जो भी तेरे कोल लाके सब कुछ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: गगन।
2: हाँ सोनिया।
1: किथे है तू?
2: यार मैं एक्सरसाइज करना आया।
1: मैंने बहुत बढ़िया सपना आया।
2: यार हुन फिर सपना?
1: किथे आ?
2: ओ मैं लेक ते आया।
1: मैं आ रही हूँ।
2: ओ तू इत्थे की करना?
1: उत्थे रुक।
2: हेलो सोनिया ओए।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 04332802522 ते।
2: हाँ जी रेडियो

ब्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: हां जी हां जी, ओए

अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार, चुपै चुप न होवी जे लाय रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह सियान पाला खोए ता एक न चले नाल। किव सच्यारा होई है किव कूड़ै टुटे पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्मै अंदर सब को बार हुक्म ना कोए, नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोई।

प्रवाहो साचा साहिब साच नाए पाख्या पौ अपार आखें मंगें दे दे दात करे दातार फेर के अग्गै रखिए जिद दिसै दरबार मोह के बोलन बोलिया जिद सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सच्यार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नान गाविए गुने निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हासो कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार बती माई जे हो जाना आखा नाई कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जित सपावा विन पाने के नाय करी जेती सृष्ट उफाई वेखा विन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवाक नाम विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रहाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवे ता वात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरै नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे ते हा कोई न सुजे जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै तर तवल आकाश सुनै दीप लोप पाताल सुनै पो न सकै काल नानक।

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुझ पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुझ पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

अंत कारण केते बिलला है, ताके अंत ना पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए। केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाए आखन पाए, ओ जाने।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एक आवार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सत्य की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए, लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै फीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंगन दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था परखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चाप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतनांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद मनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़िए बहुत अनूप, कां किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़िए सुरां सिदा की शुद्ध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महामलसूर, तिन मैं राम रिया भरपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा, तां के रूप न कथने जाए, ना ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

जाप श्रीमुख वाग्पाद सही दसवीं छपे चंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जाति हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जय कोट इंद्र इंद्रान सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्रन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अभेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अडामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अभीते नमस्तं अभाये नमस्तं अडाये नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाजे नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएक नमस्तं अनेक नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भर्मे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेषे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्घाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाय नमस्तं अभाये नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं संयोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अभंगे नमस्तं अगमे नमस्तरमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अवेशे नमस्तं नित्तामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तं अभेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वदंदे नमो सत्वंदे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्भाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तत रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री चंतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंत है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्ध करदा अधो उर्ध अर्धंग अगग उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सत दाता दयारं अछेती अपेदी अनाम अकाम समस्तो पराजी समस्तस्तताम तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाथे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा साये नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व दिशंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्म पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान ताए एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेदर्क देव रूप रंग न जात पासो जानी कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अभेद अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेयन पे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार महिमा अपार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनार

कालानकान अनुभूत अंग अभावंगत मित पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदिष्टे तरम सर्वां बरनांडिय अंडंड बांडिय चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निरनामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभे जुमेश के आगा जिकर्म के आ

सर्वा अवर्ण के जगतं कृति हैं के छत्रं छत्री हैं के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव हैं के आप अभेव हैं के चक्रं बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैब गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजग रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सलीख में गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीज़ुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज़ुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिका में त्रिभर्गन त्रिभादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी प्रवास है निरकत प्रवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चातरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिख है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चांद तौ प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साक शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तौ प्रसाद के जाहिर जहूर है हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकं प्रनास है समस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम प्रनास है बिस्तल निवास है के सर्वर गवन है के हमेशल रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परम परम ईस है समस्त अधीश है अदेशल अलेख है अभेशल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है के जुर जुमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व सुभाष है के अजब स्वरूप है के

गण मुदाम हर बार गंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मन मन प्रगास गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अपार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले है अर काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कल खंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्म नायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंशात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सुतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते अजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमं सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे

बड़े बड़ियार अवतार इसार की धार बिछैया तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सु एक दवैया दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बहु पुंज कपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत

0: नहात परियो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पुत्रियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपे हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सबे तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा नंज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रच्छा राख लो।

चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत टीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर्ष करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिंत नहीं पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तो तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह भी सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पूपा अंडज जे राज से तज कीनी उत्पुज खान बहु रज दीनी कहो फूर राजा हर बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंभव आज जुगा स्वरूप सुजंभव आव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे तिन के दुष्ट दुख है मरे पुरख जवन पग परे त्योहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार त्योहार है ताके काल निकट नहीं आए है रक्षा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

माया अगन सावी को जई करता है खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया।

आगम अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखण को समरथ ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ

गति राखण कौ समरथ संत ज्यों जान हो त्यों राख हर प्रभ तेरे कृते गणो असंख अवगण मेरे असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिया मोह मगन विकराल माया तौ प्रसादी कूड़िया लूक करत बेकार बिखड़े प्रभ नेर हू ते नेरया

0: जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पत पावन भगत वत्सल कृपा दे खजाने ज्योति स्वरूप दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दी साजी निवाजी साध संगत जी हजूर दी महान बख्शिश रहमत कृपा दा प्रतीक ए समा है। आप जी सिख संगतां गुरमुख प्यारे गुरुद्वारा साहिब दीवान हाल मंजी साहब विखे हर रोज दे निजम मुताबक जो सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार विखे प्रकाशमान होके हजूर पावन श्री मुखवाक बख्शते हैं उस दी कथा विचार नाल आप जी जुड़ते हो। आज भी इस भाग अवसर हजूर ने सानू कृपा करके बख्शिया है जिथे आसा दीवार दे शंतां शब्दां सलोकां समेत संपूर्ण कीर्तन होए हन। वडभागी संगतां ने सतगुरां दी हजूरी विखे सज के जां मीडिया दे माध्यम राही हजूर दी पावन बाणी दे कीर्तन नूं टीवी द्वारा रेडियो द्वारा जां होर किसे साधन राही सुन के लाहा प्राप्त कीता है। सो आओ अज दा जो पावन श्री मुखवाक हजूर ने बख्शिया है अपने मन चित बिरतियां नूं एकागर करो शरदा भावना दे सहत हजूर जो कृपा कर रहे हैं पावन उपदेश पढ़ सुन के आपा सारे लाहा प्राप्त करिए जी।
1: सतनाम वाहे गुरु साहिब जी जैत साड़ी महला पंजवा कार दूजा शंत।
0: जैत श्री राग दा नाम है श्री राग माज गौड़ी आसा संग भई बौरी गूजरी गंधारी ते बिहागड़ा सुहायो है। वड हंस सोरठ तनासरी ते जैत श्री टोडी ते बैराड़ी और तलंग सूही छायो है। बिलावल ते गोण राम कली नट माली गौड़ा मारू ते तुखारी ओ केदारा पैरों पायो है। बसंत सारंग मलार कानड़ा कल्याण प्रभाती बेपास जय जयवंती गुण गायो है। मुख रूप विच 31 राग हन। हजूर ने 31 रागां द्वारा पावन उपदेश बख्शिया है। एक एक राग दियां कई कई जातियां भी हन। इथे जैतसरी राग विच पंचम पातशाह जी शहीदां दे सिरताज शहीदां दा मुकट जिन्हां ने महाराज जी ने शहीदी प्रथा चला दित्ती के धर्म वास्ते अपना शरीर भी कुर्बान कीता जा सकता है। सिख जगत विच ए बेमिसाल मिसाल आप जी ने कायम कीती है। नाम बाणी दे रसीए गुरबाणी रचनहार गुरबाणी दा बोहिथा स्वरूप सतगुरु जी तरन गगन नवखंड मह जोत स्वरूपी रहे पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन प्रतख हर घर दूजा दूजे घर सुरताल विच सतगुरु जी ने इस शब्द नू आप गाया है। गुरु के रागियां नू महाराज जी ने आग्या कीती है कि जैत श्री राग विच इसनू गाओ दूजे घर विच इसनू गाओ। फिर अगे हजूर लिखदे ने छंत छंत छंद उचारदे हन छंत ओ हुंदा है जिदे विच काव्य भी होवे ते संगीत भी होवे। छंत सिरलेख हेठ महाराज जी ने वख वख छंद उचारे हन चार तुकां वाले छंद जिहड़े हन चार पौड़ियां वाले भी छंतां विच आउंदे आ छे तुकां वाले जां छे पौड़ियां वाले भी छंद छंतां दे सिरलेख हेठ सतगुरु जी ने उचारे हन। इस तों वधीक पौड़ियां भी छंत सिरलेख हेठ महाराज जी ने उचारियां हन। छंत नाम जस दा भी हुंदा है। गुरु की बाणी विच पंक्तियां हन हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावै हर गुण छंता। असवा छाती शीतल मन सुखी छंत गोविंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए। छंत हुंदा जिस विच वड्याई दे गीत गाए जान उपमा कीती जावे। सो सचे पातशाह जी ए पावन छंत उचारदे हन।
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
0: सब तो पहला आप जी ने गुरबाणी दा प्रधान मंगल कीता है। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच बार बार आउंदा है। 523 बार हजूर ने यह पावन प्रधान मंगल गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लिखिया है। जिवें श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दे विच एको ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह, इस तरह महाराज ये मंगल करदे हन दसम बाणी च। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच आप जी एको ओंकार सतगुर प्रसाद ये मंगल करदे हन। वस्तु निर्देशक मंगल है। हजूर कहिंदे ने एक एका लिखिया है अंकां विच। एका एक अंकार लिख दे खालिया ऊड़ा ओ अंकार पास बहालिया, भाई गुरुदास जी ने लिखिया है। हजूर ने अंक विच एका लिख के एक अदुत्ती ब्रह्म दा लखायक ए मंगल कीता है कि ए मंगल किसे देवी देवते दा नहीं है, ए केवल ता केवल उस सर्व व्यापक परमात्मा दा मंगल है। ओंकार ओ सारयां दा प्रकाशक है। जिन्नी भी सृष्टि आ सारी सृष्टि दा रचैया वाहिगुरु है। फिर वो सतगुर सतगुरु स्वरूप है, प्रसाद आनंद स्वरूप है, अथवा सत चेतन आनंद स्वरूप है। ते हजूर नू बेनती कीती महाराज एको ओंकार दी प्राप्ति किवें हो सकती है, उनू मिलिए किवें, उनू प्राप्त किवें करिए। उस्ताद चाहिदा हुंदा किहदे तो सिखिए सिखिया लईए। ता हजूर कहिंदे सतगुर प्रसाद। गुरु ता दुनिया विच बहुत ने। गुरु शब्द जिहड़ा वह वरत्या जांदा जिहदे कोलों असीं गुण लैंदे आ। कोई बंदा सानू गुण सिखावे ते असीं कहिंदे फलाना मेरा गुरु आ। दुनियावी किसब दुनियावी गुण असीं जिन्हां तों सिखदे हां उस दुनियावी गुरु हुंदे आ, पर उह सतगुरु नहीं हुंदे। जे वाहिगुरु जी दी प्राप्ति करनी है, वाहिगुरु जी नूं मिलना है, ते सतगुरु जी दी लोड़ आ। जैसा सतगुरु सुणींदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। बसीठ नाम विचोले दा हुंदा, दरगाह दे विचोले सतगुरु जी हन। हर नामो मंत्र दरड़ाइंदा कट्टे होमै रोग। सतगुरु जी सिख नूं नाम दृढ़ करवाउंदे हन, नाम दृढ़ करवा के आप जी होमै दा रोग कट्टदे आ। जिन्ना चिर तक होमै है उन्ना चिर तक वाहिगुरु जी नाल नहीं मिलिया जाना। यह जिनी छेती मिट जाए, जिनी देर नाल मिट जाए, यह सब इहदे ते निर्भर आ। जिन्ना चिर तक होमै है नहीं वाहिगुरु जी नाल मिलाप हो सकता। तो महाराज जी कृपा करके नाम जपा के सिख दी होमै मेट दे आ। कटे होमै रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। वाहिगुरु जी ने तुरों ये संजोग मस्तक विच पा दिता होया है कि इस जन्म दे विच, मनुखा जन्म दे विच इस जीव नू सतगुरु जी की प्राप्ति होनी है। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख रसक बैरागी, मिटियो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। सतगुरु जी नाल मिलाप होया ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब आप जी खुद आप सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ। सतगुरु जी दे लखण भी दसे, सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ, तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ। जिहड़े आप वाहिगुरु जी विच अभेद हन, गुर गोबिंद गोबिंद गुरु है हर नानक भेद ना पाई, किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। वाहिगुरु जी नाल ताने पेटे दी न्याई हन, एक ही हन। ऐसे सतगुरु जी जदों मिलदे हन सिख नूं सेवक नूं, ता एको अंकार

0: चाहे एहो अंत न जाने कोए, बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप। महाराज वाहिगुरु किन्ना क वड्डा है, उदी वड्याई किन्नी क वड्डी है, ते हजूर कहिंदे जिन्ना वड्डा वो आप है ओनू वो आप ही जानदा, ओनू कोई नहीं जान सकदा, उथों तक किसी मनुख की पहुंच नहीं है। ते महाराज सच्चे पातशाह जी अगे कृपा करके कहिंदे अगम हुण विस्तार कर दिता कि मन की गमता तो परे, असी जदों किसी चीज का कोई क्याफा लाना कोई अंदाजा लाना तो मन के नाल ही लाना, असी मन के नाल ही सोचांगे। ते महाराज ने ते अगम कह दिता कि मन दे तां उत्थे गमता ही नहीं है, मन दे उरे रह जांदा उरे, मन दे उस तक पहुंच ही नहीं है, जदों मन दे उथों तक पहुंच ही नहीं है ते मन उस दे बारे अंदाजा किवें लावेगा, अंदाजा नहीं लाया जा सकता। हुण इह वेख लो मात्रावां दा फर्क हुंदा, जे ते अगम शब्द होवे ते इहदा अर्थ हो जाएगा कि मन दी गमता तो परे, ते अगम दा अर्थ हो जाएगा कि जिदे विच कोई गम नहीं है कोई चिंता नहीं है। ते जे एड़े नू कन्ना ला दईए बना दईए आगम, ते आगम दा अर्थ बन जांदा शास्त्र ग्रंथ, ग्रंथां करके भी वह सच्चा पातशाह उच्चा है, ग्रंथां करके भी उहदा अंत नहीं आ सकदा। हुण ग्रंथ जिहड़े हन वह मनुखां ने लिखे होणगे, ऋषियां मुनियां ने लिखे होणगे, सतपुरशां ने लिखे होणगे, ते उन्हां ग्रंथां विच भी यही लिखिया होवेगा कि उहदा कोई अंत नहीं है, ग्रंथां विच भी यही लिखिया। जे असीं वेदां शास्त्रां की गल कर लवांगे ते बाणी च हजूर कृपा करके कहिंदे ने नेत नेत कथंत वेदा, वेदां बारे कह दिता कि जिहड़े वेद आ इह वी वाहिगुरु जी नूं बेअंत बेअंती कहिंदे आ कि तेरा अंत नहीं आउंदा। नेत नेत कथंत वेदा ऊच मूच अपार गोबिंद है, वह वड्डे तो वड्डा है। ते बाणी च कृपा करके फरमाए बचन हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे सब ऊपर वड्डे वडोना, किन्नी वारी वड्डा शब्द आया, जो त्यावै हर अपरंपर स्वामी तिस काटे पाप कटोना। जे उहदे दरबार की गल कीती है अत ऊंचा तां का दरबारा, अंत नहीं किश पारा वारा, कोट कोट कोट लख तावै इक तिल तां को मैल न पावै। सच्चे पातशाह तेरे दरबार का भी अंत नहीं है, दरबार न मैं तेरो दरबारा, आप जी दे दरबार का भी कोई अंत नहीं है। सच्चे पातशाह जी आप जी दे नाम का भी कोई अंत नहीं है, नाम तो मनुखां दे भी हुंदे आ, नाम तो चीजां दे भी हुंदे आ, हर चीज नूं नाम दिता गया ना। ईवन के कोई भूचाल आ जाए कोई पानी का हड़ आ जाए तो उन्हां नूं नाम दिते जांदे आ चेता रखण वास्ते, हिस्टरी च लिखण वास्ते, हर चीज नूं नाम दिता जांदा, हर एक्शन नूं नाम दिता जांदा है। वह जिहड़े नाम हन चीजा दे जीवां दे मनुखां दे जानवरां तक दे नाम हुंदे आ, पर किसी का नाम सदीवी नहीं है, सब दे नाम खत्म हो जाते हैं। साढ़े मन च शौक हुंदा ना, खुशी हुंदी कि मेरा नाम रहे, मेरी संतान होवे साढ़े घर, इस तरह बच्चे पैदा होण, साड़ी वंश चले, मेरा नाम रह जाए। ते विचार के वेखिए नाम रहिंदा किन्ना चिर आ। बाणी च हजूर ने बड़े विस्थार नाल समझाया, आपां टूक मात्र बेनती करके अगे चलीए। महाराज कहिंदे आया गया मुया नाओ पीछे पत्तल सदे हो काव, कि बंदा दुनिया विच आउंदा है दुनिया चो चलिया जांदा है, कुछ समय दा नाम रहिंदा है फिर नाम भी चलिया जांदा। नाम ते पुत्रां बच्चियां करके हुंदा है सन ऑफ लिखिया जांदा ना कि फलाना फलाना, एक दो पीढ़ियां नाम रहिंदा है, ते फिर जिहड़ियां साडियां चीजां जायदादां जमीना खरीदियां हुंदियां हन उन्हां दे विच नाम बोलदा है, साडी विरासत जिहड़ी चलदी है। ते ज्यों ही पांच साल बाद जमाबंदी बदलदी आ ते फिर प्यो विचों निकल जांदा, उहदा नाम कागजां च बोलण वड़ जांदा। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰ ਦਿਲਵਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਮ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਏਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਆਦ ਸਤੇ, ਜੁਗਾਦ ਸਤੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸੋਨਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੈਂਤ ਵੀ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਤ ਵੀ ਜਪਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਦਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੋਦਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੋਦਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੋਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੋਦਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਾਵੈ ਤੁਹਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦ ਇਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨਿਰਲੇਪ ਆ, ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਜਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਰਾਵਾਰ ਉਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਉਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
1: ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ ਅਕਥ,
0: ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਣਾਉਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ ਅਕਥ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਖੱਟਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸਤਾਕ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਸਤਾਕ ਮੋਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰਾ ਭਾਗ, ਅਚਰਜ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਸ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ना सुनिया जा सकता। कबीर साहब जी जैसे महापुरखा नु पुछ लो, कबीर सात समुंद मस करो कलम करो बन राय, बसुदा कागद जाओ करो हर जस लिखन ना जाए। मोर ला दिती कबीर साहब ने, कहिंदे भाई सारी धरती दा कागज बना लो, जिनी बनस्पति है इहदियां कलमां बना लो। तो सजे पातशाह जी दसवें पातशाह जी ने वचन कीता है श्री दसम ग्रंथ साहब दे विच कि लखारी ला लो पौन देवते नू कि हवा बड़ी तेज चलती है, पर फिर भी उस वाहिगुरु जी का अंत नहीं पाया जा सकता कि वह किन्ना वड्डा है, उदे गुणा का कोई था नहीं पाया जा सकता। ते जब जी साहब दे विच मुढ विच सानू सिख्या दे दित्ती, इसे करके ही सानू पांच प्यारे साहबान हुक्म करते हैं कि जब जी साहब रोज पढ़ो, साड़ियां अखां दे सामने आउंदी है गल, ये पावन बचन निकलन हिरदे द्वारा, असीं इन्हां बचनां नूं अपने हिरदे च हृदय च धारण करिए, अपने सुरत द्वारा अपने हिरदे विच इन्हां बचनां नूं लजाइए कि कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, के करोड़ा ही करोड़ा लोगों ने जतन किया पर उदी कथा दा जड़ा मुकम्मल तौर ते अंत है कोई नहीं जान सकता। कथन ना जाए कथिया नहीं जा सकता, अकथ कथन तो परे है। हां गुरमुख प्यारे वाहिगुरु जी दी कथा करके, वाहिगुरु जी दी अकथा कथा नु सुन के, अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जान सा भूख लहंती। ए नहीं कि कथा करनी नहीं है, हर हर कथा साध संग सुनाहे कोट पाप खिनमै मिट जाहे, बहुत वड्डी दात है। वाहिगुरु जी दे गुणा नु गा के सुन के साडा जीवन जिहड़ा है उधरदा है, साडा पार उतारा हुंदा है, पर अंत नहीं पाया जा सकता।
1: नानक प्रभु शरणागति,
0: कहिंदे हे प्रभु जी आप जी दी शरण विच असी आगति आए हां, आप जी दी शरण विच आके असी प्राप्त होए हां।
1: राखण कौ समरथ,
0: महाराज एक आप जी ही हो जेड़े रखिया करन वास्ते समरथ हो, पावे के रखिया करन वास्ते कई जीव जेड़े हन ओ भी कोशिश करदे रखिया करदे आ, औखे वेले साडी सपोर्ट करदे आ ते साडी रखिया भी हुंदी आ। ए जेड़े जीव आ वाहिगुरु जी दी अंश जू हन, सो इस करके आपो अपनी सत्ता मुताबक जैसा बित तैसा होई वरता है, अपना बल नहीं हारा, जे को अपनी ओट संभारा। साह संगत जी जिनी एक किसे दे विच ताकत हुंदी आ ओ रखिया करदा, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया च जिहड़ा समर्थ रखियक होवे, जिहड़ा हर समय हर थां ते साडी रखिया कर सकदा होवे, सानू जिथे भी लोड़ पवे उथे हाजिर हो जाए, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वाहिगुरु जिहड़ा है ओनू किते आउणा नहीं पैंदा क्योंकि सारियां थावां ते मौजूद ही आ। अगे बचना चाहणगे इह पावन उपदेशक बचन महाराज जी दे कि उह ते सारियां थावां ते सदा हजूर हाजर है नाजर, कदे ना भयो दुराई, ओदा हमेशा ही पास आ। उन्हें रखिया करनी होवे ओदा सदीवी है ते कोल आ, नेड़े तो नेड़े है, कह रविदास हाथ पै नेड़े सहजे होए सो होई, हत्थां नालों भी नेड़े पैरां नालों भी नेड़े, सब तो नेड़े साडे अपने हाथ हुंदे आ। अपनी रखिया वास्ते कोई चीज साडी तरफ नूं आवे, जदों असीं वेखदे आ वेखदे अपने आप नूं कि असीं अंडर अटैक आ, साडे ते अटैक होण लगा किसी चीज दा, ते सब तो पहला असीं अपने हाथ मूहरे करदे आ, पैरां नाल भज के अगे पिछे हुंदे सहायता करदे आ अपने आप दी खुद। पर वाहिगुरु जी बारे भगत रविदास जी दी रसना तो पावन उपदेश दिता कि वाहिगुरु सच्चा पातशाह जिहड़ा उह हत्थां पैरां नालों भी नेड़े आ, जिन्ना समय च साडे हत्थां पैरां ने साडी रखिया करनी आ, वाहिगुरु उहदे तो पहला भी पहला ही साडी रखिया करन वास्ते समर्थ है। समर्थ सर्व शक्तिवान है, सब तरह नाल साडी रखिया करदा है।

0: चार संत आउणगे, चार ही श्लोक आउणगे। सच्चे पातशाह जी महाराज कृपा करो, अरदास करन दा तरीका है। बाणी च महाराज कहिंदे हो मैं छड़ दियो अपनी भगती दी, सेवा सिमरन दी, तड़के उठन दी, जो भी हो मैं पाली हुई है, शुभ कर्मा नूं करदियां होइआं सिख ने निमाणा होके रहना है कि महाराज मैं तुहाडी सेवा नहीं कर सकदा, तेरी सेवा तुझ ते होवे और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद भावे जिस नूं तू रंग धरता। महाराज तू ही सेवा करावे तो सेवा हो सकती है, ये सेवा मैं नहीं कर रहा, तू ही कर रहा, हमें मिटनी है। तो सच्चे पातशाह जी दे अगे अरदास करनी है, महाराज जिदा भी तुसी जानदे हो मैनू ते मेरा अपना आप भी तुहानू दसना नहीं आउंदा, महाराज सच्चे पातशाह इन्ने औगण ने मैं किवें बयान करा, मेरी रसना ही बोल नहीं सकती, मैनू खुद नूं नहीं पता कि मेरे च औगण किन्ने आ, मैं खुद भी नहीं जानदा जी। जो औगण हो जाता उदो पता लगता, कई बार उदो भी नहीं पता लगता, कई बार बंदा गलती कर रहा हुंदा पर नहीं पता कि मैं गलती कर रहा, कोई दसे दे समझावे कि भाई गुरु साहब तां इदां कहिंदे आ तू एवें कर रहा, फिर समझ पैंदी अच्छा मैं गलती कर रहा सी। महाराज मैनू मेरिया गलतियां का भी नहीं पता कि मैं किनिया गलतियां कर रहा हां, जिवें भी तुसीं जानदे हो जिदां दा मैनू समझदे हो मैं जैसा भी हां, महाराज रख लो। वेख लो किन्ना सोहना तरीका, धन महाराज साहब जी की पावन बाणी आ, ऐसे बचन सानू आपो फुर सकदे आ, जे साडे पास गुरु दे शब्द ना होण, सतगुरां दी बाणी ना होवे ते साडी मत विच ऐसे वाक आ सकदे आ कि असीं वाहिगुरु जी अगे ऐसी अरदास करिए। सच्चे पातशाह ने आप कृपा कीती है सानू सब तरह दे नाल जिग्यासू हो के किवें कहना है की कहना है, आप समझा रहे हैं कि महाराज जिवें भी तुसीं जानदे हो जी, महाराज तुहानू ते पता ही आ मैं जिवें दा भी हां, त्यों राख उदां दा ही रख लो जी, मैनू मेरे ते कृपा करो, हर प्रभ तेरे आ, महाराज मैं तेरा हां, आप जी दे दर ते आया होया हां, महाराज मैं अपना शरीर हाजिर कर दिता, माई मन मेरो बस ना है। सच्चे पातशाह मन मेरे बस नहीं है, शरीर तुहाडे पास हाजिर कर दिता, पंजां प्यारियां दे पास हाजिर कर दिता शरीर, उन्हां ने खंडे दा अमृत छका दिता, पर मेरा मन जिहड़ा है महाराज तुसी वस विच करो, महाराज मेरे मन ते तुसी असवारी करो, मेरा मन हाथी वर्गा है, सच्चे पातशाह मेरे मन दे महावत बन जाओ, आप मेरे मन नूं प्रेरो, ये मैं चाहुंदा हां। सच्चे पातशाह जिवें आप जी नूं पाउंदा कृपा करके रख लो जी, मैं तुहाडा हां, आप जी दे दर ते आया हां।
1: किते गणो असंख अवगण मेरे आ,
0: मैं किन्नी की गिनती करा जी, महाराज जे गिण गिण के दसन लगा ते मेरे कोलों दसे नहीं जाने, मैनू पता नहीं है, पहचान ही नहीं है मेरे खुद दे औगण दी भी, महाराज कृपा करो। असंख गिनती तो रहत, असंख साह संगत जी अजकल दी जिहड़ी गिनती है मिलियन बिलियन ट्रिलियन वगैरा, अज नवे जमाने की गिनती है, ते पुराने जमाने च हुंदा सी सौ हजार लख करोड़ अरब खरब, इहदे तो अगे गल चली जाए ते फिर हुंदा सीगा गंज पदम, एदा गिनती सी। सो महाराज ने असंख कह दिता, संख गिनती सी ऐड़ा ला दिता नाल कि सच्चे पातशाह मेरे विच इन्ने औगण हन कि उन्हां दी गिनती नहीं है कोई भी, आप जी कृपा करो। औगणी न मोसो को गुणवान तो सो नाही, जप तप व्रत मोह एक नह पाइये, कब आयो है शरण गहे ताए के चरण, गुरु तारन तरन निज हाथ दा बचाइए। हे तारन वाले जहाज स्वरूप सतगुरु सच्चे पातशाह मेनू कृपा करके तार लो जी, आप मेरे ते मेर करो, मेरे औगुणा की कोई गिनती नहीं है।
1: असंख अवगुण खदे फेर नित प्रत सद भूली
0: है, जो रहत औगुण हन फिर महाराज औगुण होकर होण करके गलतियां करते फिरदे, गुनाह करते फिरदे आ, ते नेता प्रति हमेशा ही भुला करते हां।
1: मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी भूली है,
0: मोह दे विच मस्त हां, दिन रात साडा जिहड़ा मन है माया विच मोह करदा, पदार्थां विच मोह करदा, महाराज माया हैगी बड़ी विकराल, माया बहुत पुठे कम कराउंदी आ, केड़ा कम है जिहड़े जो माया ना करावे साडे कोलों, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਮਾਇਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨਕ ਕਲੋਲ ਬੁਝੈ ਮਾਇਆ ਕੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੇ ਜਪ ਜੀਵਾਂ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਦਾਸ ਕੀ ਘਾਲ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਰਾਇਣ, ਹਮਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰੈ ਤ੍ਰਖ ਡਾਇਣ। ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਣ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਡਾਇਣ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਇਹ ਵਿਕਰਾਲ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਛੋਟ ਬਹਿ ਤੋ ਛੂਟੈ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਸੰਚੈ ਤੋ ਭਉ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਲੋਕ ਕਰਤ ਬੇਕਾਰ ਵਿਖੜੇ,
0: ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਜਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੈ, ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਆਵੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਜਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਸੇ ਵੇਖਦਾ, ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ, ਸੱਜੇ ਵੇਖਦਾ, ਖੱਬੇ ਵੇਖਦਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਛਪਾ ਲਏਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਅਨਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ, ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੈ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਬ ਕੌਣ ਪਰਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂ, ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਇਆ ਨਾ ਠੂੰਗੜਾ, ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੈ। ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕਣ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ
1: ਹਾਂ। ਮੇਰੇ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ।
1: ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ,
0: ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ।
1: ਬਾਦ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਿਆ,
0: ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਹਰ ਹਟਕੀ ਮਾਲਾ ਜੈਸੇ ਟਿੰਡ ਲਗਤ ਹੈ, ਏਕ ਸਖਨੀ ਹੋਰ ਫੇਰ ਭਰਿਅਤ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਖੇਲ ਖਸਮ ਕਾ ਜਿਉਂ ਉਸ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ।
1: ਸ਼ਲੋਕ ਨਿਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਅਸੰਖ ਗੁਣ,
0: ਨਿਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਤ ਨਾਮ ਨਾਚਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਨਿਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਰਿਜਲਟ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਅਸੰਖ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आपके दिन की एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ शुरुआत करने, हमारे शास्त्रों ग्रंथों के सागर से ज्ञान के मोती चुन चुन कर आपके लिए लाता हूं, जिसे सुनकर हम सब का कुछ तो भला हो। आप सभी के प्यार के लिए आपके सजेशंस और डिमांड का मैं स्वागत करता हूं। आपके फीडबैक ही तो हैं जो हमें और बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। अनुज जी ने लिखा है कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में भगवान की भक्ति करने का समय कहां से निकालें? कई बार सोचने पर भी टाइम ही नहीं बचता। ऑफ कोर्स अनुज जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। आप कहां से हैं ये नहीं लिखा, खैर कोई बात नहीं, आपका मैसेज हमारे लिए बहुत कीमती है और वैल्यूएबल है। अनुज जी के इस प्यारे से प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं आज पुण्य दर्शन में, इस छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ। आज सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की दौड़ है, एक अलग तरह का शोर है। हर कोई आपको ज्ञान दे रहा है, हर कोई आपको ऐसी टिप बताना चाहता है कि बस ये वाली रील देख लीजिए, आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। हो सकता है 1000 रील में से कोई एक रील आपके काम की हो, किंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि 999 रील्स भी आपके लिए जरूरी हैं। हम कितना समय स्क्रॉल करने में लगा रहे हैं, इसीलिए जीवन हमें रोल कर रहा है। यही वो जगह है जहां गीता में हमें कछुए की तरह रिएक्ट करने के लिए कहा है। कछुआ तो आप सब लोग जानते ही है ना, जरा सा खतरा महसूस आए तो अपने अंगों को चारों ओर से समेट कर अपने कवच के अंदर सुरक्षित हो जाता है। बस भगवान भी भगवद गीता में यही कह रहे हैं कि हमें कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेटना सीखना पड़ेगा, अर्थात इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने वश में कर लेना ही अपने माइंड को, अपने बुद्धि को स्थिर करना है। हमें हर रील पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, हमें हर जानकारी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं, हमें आज हर ट्रेंड के पीछे भागना जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा को फालतू की चीजों में खर्च करने की बजाय अगर आप अपने लक्ष्य, अपने काम और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगाएं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। गीता का ये संदेश केवल ये नहीं कहता कि अपनी इंद्रियों को रोक लो, बल्कि इंद्रियों का सही उपयोग कीजिए। क्या है इंद्रियों का सही उपयोग, जानते हैं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का 58 श्लोक है, जिसका मुख्य भाव यह है कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही अपनी इंद्रियों को विषयों से उसी प्रकार समेट लेता है, हटा लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को खतरा भाप कर खोल में समेट लेता है। यानी जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर हटाता है उसकी बुद्धि स्थिर है। अब इंद्रियों के विषय क्या है? भौतिक संसार में रहते हुए हमारी इंद्रियां लगातार अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं। ये नेचुरल है। आंख देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, जीभ स्वाद के लिए है और अन्य इंद्रियां अपने अपने विषयों के लिए सक्रिय रहती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें। केवल बाहरी रूप से इंद्रियों को रोक लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक मन में उन विषयों के प्रति आकर्षण बना रहता है तब तक इंद्रियों को कंट्रोल करना कठिन हो जाता है। वास्तविक इंद्रिय नियंत्रण तब होता है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को, ध्यान दीजिएगा, जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाता है। कैसे? आंखों से भगवान के सुंदर विग्रह देखना, कानों से कृष्ण का नाम लेना, राम का नाम लेना और भगवत गीता सुनना, जीभ से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और जीभा का एक और कार्य भी है, खाना। आप आइए तो केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए। इस प्रकार इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लग जाती हैं। गीता का यह संदेश केवल यह नहीं है कि इंद्रियों को रोक लो, बल्कि संदेश यह है कि इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाओ। यही स्थिर बुद्धि और वास्तविक इंद्रिय नियंत्रण का मार्ग है। इसलिए अनुज जी, आपके साथ साथ हमारे सुनने वाले आज अपने आप से एक सवाल पूछिए कि मेरी इंद्रियां मुझे चला रही हैं या मैं अपनी इंद्रियों को सही दिशा में चला पा रहा हूं। जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं तब धीरे धीरे मन शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है और जीवन सही दिशा की ओर आगे बढ़ना आरंभ करता है। तब आप देखना, आप डेली रूटीन के काम काज करते हुए भी भगवान की सेवा सरलता से कर सकोगे। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार प्रयास तो कीजिए। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा। फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। नमस्कार।

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनिया दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते
1: 4 February 2024
2: लव इमोशन रिलेशनशिप की कहानी बोल पावे ना बोल।
3: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: एक अजिही दुनिया जिथे जिराफ हुण सब तो उच्चे जानवर नहीं हैं। ज़ूस विक्टोरिया मान नाल चिड़ियाघर विच डायनासोर्स नूं पेश करदा है अपने सारे मनपसंद जानवरां दे विच। 3 चिड़ियाघरां विच 60 तो वध असली आकार ते डायनासोर्स दे नाल एक पुरातन इतिहासिक मुहिम लई तैयार होवो। मेलबर्न चिड़ियाघर, वेरीबी ओपन रेंज चिड़ियाघर अते हिल्सविल सेंचुरी दे विलखण बाहरी वातावरण विच एनिमेट्रॉनिक जीवां नूं जिउंदे जागदे वेखो। चिड़ियाघर विखे डायनासोर सिर्फ सीमित समय लई हन। आज ही अपनी मुहिम दी योजना बनाओ।

आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते
1: 4 February 2802 5 2 3 4 4 7 3 2 8 0 2 5 2 Rhythm Boys Entertainment presents Bol Paave Na Bol. Kuch galla kehniyan ni pendiyan, bas mehsoos karniyan pendiyan ni. Eho gal hai te main hune apni zuban vadd ke ho jaana. Is var gal sirf bolan di nahi, dil di sunan di hai. Kisi dikki kive kattange, main nahi reh sakti ode bina, mainu oh chahida. Releasing worldwide 4 September, written and directed by Rakesh Dhawan. Love, emotions, other relationships di kahani. Bol Paave Na Bol.
2: Yaar tu itthe inni cheti aake pakka vi ho gaya. Ki jugaad laya hai?
3: Jugaad nahi, eh hai 8 saalan to vi vadda tajurba Bansal Immigration da, jinna ne vadiya course vich admission karai ate fir mainu PR di raah vi vikhai. Inna hi nahi, eh student visa, AAT appeals, skilled visas, PR, US visitor visa ate hor vi kai migration services provide karde ne.
2: Number da de Bansal Immigration walian da.
3: Haan ji, appointment book karwaun layi call karo 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: एक अजेही दुनिया जिथे जिराफ हुन सब तो उच्चे जानवर नहीं हैं। ज़ूज़ विक्टोरिया मान नाल चिड़िया घर विच डायनासोरस नु पेश करता है अपने सारे मनपसंद जानवरां दे विच। तीन चिड़िया घरां विच 60 तो वध असली आकार ते डायनासोरस दे नाल एक पुरातन इतिहासिक मुहिम लई तैयार हो। मेलबर्न चिड़िया घर, वेरी बी ओपन रेंज चिड़िया घर ਅਤੇ ਹਿਲਜ਼ਵਿਲ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਵੇਖੋ। ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਖੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨ। आज ही अपनी मुहिम दी योजना बनाओ।
0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।
5: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। एटीओ ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, एटीओ डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
6: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 और विजिट bansallawyers.com.au।
7: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
8: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
7: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
6: सोना चाहिदा,
9: भरोसा चाहिदा,
6: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
10: Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
9: ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਟੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਨਿਖੜਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਜ਼ਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਚਿਜ਼ਮ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿਜ਼ਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਚਿਜ਼ਮ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ RTO 0206
11: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਮੋਰਗੇਜ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾਣੀ, ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਟੂ ਫੋਲਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੋਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਤੱਕ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਨ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੋਨ, ਹਰ ਲੋਨ ਲਈ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਡੀਲ, ਲੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵੈਲਕਮ। ਕਾਲ ਰਾਜ 0494-763-700 ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਟੂ ਫੋਲਡ ਲੈਂਡਿੰਗ।
12: ਔਨ ਰੋਡਸ ਆਨਰ ਕੈਂਪੇਨ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ BYD ਕਾਰ ਲੈ ਆਓ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰਾਈਵ ਅਵੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। BYD C-Line 7 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ $54,990, BYD C-Line 8 ਡਾਇਨਾਮਿਕ FWD ਸਿਰਫ $56,990 ਤੇ BYD Shark 6 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ $57,900। ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਫਰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ BYD ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ। BYD ਔਨ ਰੋਡਸ ਆਨਰਸ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ।

ऑन रोड्स ऑनर कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त तो 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी BYD ऑन रोड्स ऑनर्स कंडीशन अप्लाई।

0: बोनस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
1: फिर लवाइए कित्थों?
2: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
3: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा। सीधे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे ही कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशन.com.au ते जाओ।